0: Mitchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का

What? 70% मैरिड इंडियन कपल्स ये डिवोर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप डिवोर्स. सो एक नई रिसर्च आई है, 15 दिन पुरानी है, जिसमें 70% कपल्स जो इंडिया में मैरिड है अक्रॉस द कंट्री, दे हैव डिसाइडेड कि एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, नॉटी होंगे इन द सेम बेड, लेकिन जहां बात आएगी टू स्लीप, हम दोनों अलग अलग बेडरूम्स में. माय डार्लिंग, इट इज कॉल्ड स्लीप डिवोर्स एंड इट इज गेटिंग सुपर प्रेवलेंट इन इंडिया. मैं तो ये कह रही हूँ, गो अ स्टेप फॉरवर्ड. मैं हमेशा ये कहती थी, हर रिलेशनशिप में कहीं भी रहना है किसी के साथ कितने भी टाइम तक, नो प्रॉब्लम. जस्ट द ओनली थिंग दैट यू शुड और शुड नॉट डू इज शेयर द सेम बाथरूम. आपको नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप में अगर अलग अलग बाथरूम्स हो तो वो रिलेशनशिप गहरा और बेहतर हो जाता है? वट एवर योर ओपिनियन ऑन दैट इज, टू लेट मी नो अबाउट इट, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: मैं थक गया हूँ लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड बन बन के। मैं भी रॉयल्स के ईशान खट्टर की तरह लड़कियों को हॉट लगना चाहता हूँ। कैसे करूंगा मैं ये मैनेज?
1: रोशी के डीएम से।
0: ओ गॉड हितेश, आई कैन टोटली सेंस द फ्रस्ट्रेशन इन योर वॉइस, बट आई कैन हेल्प यू बिकम द नेक्स्ट हॉट गाय। सिंपली एक दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो गर्ल्स डिग मैन हु आर वेल ड्रेस्ड। इसका ये मतलब है कि अगर आपने जीन्स और व्हाइट शर्ट भी पहनी है, मेक श्योर योर व्हाइट शर्ट इज आयर्नड एंड स्टेन फ्री। दूसरा, बंदियों को वो बंदे बहुत अच्छे लगते हैं एंड स्टेटिस्टिकली दे आर मोर अट्रैक्टेड टू मैन हु स्मेल गुड। सो मेक श्योर कि आप अपना डियो ट्रैश करो और एक कलोन चूज करो इंस्टेड ऑफ दैट। तीसरी चीज ये है दैट गर्ल्स subconsciously are attracted to men who play an instrument and it's never too late to learn guitar ya tabla ya harmonium, it doesn't matter. Aap instrument play karte ho, the girls are going to be attracted to you anyway. And you know the most important thing is be a gentleman, kyunki aaj when someone is pulling out a chair for us girls ya hamare liye darwaza khol rahe hain, that's really attractive. Is sab ko try karke dekho and I promise you all the girls will stop treating you like their best friend aur wo aapko apni दूसरी गर्लफ्रेंड से भी छुपाने लगेंगी। एंड व्हेन दैट हैपेंस, थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या एफबी पर। एंड व्हाइल यू डू दैट, सेंड मी योर नंबर इफ यू हैव एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, आई विल बी हैप्पी टू कॉल यू। और इस सब के बीच में कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: It's hot.

Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Hey, Kanhaiya Lal ki.

कृष्णा को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ओके देन, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, एक री एंट्री है। हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार श्रुदय। इट्स अ नई नवेली एंट्री। उड़ी उड़ी ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद मिट्टा रॉर, स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है, पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: का के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अभी करो फॉलो, करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
1: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी,
3: मर बिगड़े में जागी धोकणी, ए चंदा में भारी चांदनी, मन दामन में भाती खुशी रे जुम जुम जुम।
1: या फिर द गुजराती एंथम खलासी,
4: ए वो फाड़ से खलासी बने कई दोने, मेरा सामने ठिकाना बने दई दोने, ए वो फाड़ से खलासी बने कई दोने, गोदेलो तमे गोदेलो गोदेलो।
1: बट आई ट्रूली थिंक दैट कोक स्टूडियो का इम्पैक्ट किसी एक गाने तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमें याद दिलाता है दैट इंडिया का म्यूजिक सीन कितना बड़ा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, फोक ट्रेडिशन बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूजिक में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी, और वो कोक स्टूडियो ने किया। उसने फोक आर्टिस्ट को सिर्फ फीचर नहीं किया, उनको सेंटर स्टेज दिया है। चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में फोक और रॉक एक साथ है। दैट्स वॉट वी कॉल द परफेक्ट फ्यूजन। बट ये परफेक्ट फ्यूजन जो है सिर्फ साउंड्स एंड जॉनर्स तक लिमिटेड नहीं है, राइट? यहाँ पे जनरेशंस मिल रही हैं, म्यूजिक के डिफरेंट रीजन्स मिलते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और फोक म्यूजिशियंस एक साथ मिलते हैं। जो गाने वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें ट्रेडिशनल रूट्स होते हैं, दूसरी तरफ कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, ऊबर कूल बीट्स कि ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है। एंड काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एग्जैक्टली ऐसी ही कोलैबोरेशन है। एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे पॉप स्टार, दूसरी तरफ कुटले खान जैसे कंटेम्प्रेरी राजस्थानी आर्टिस्ट, रैविटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 8।

0: स्वरा वर्मा मिट्टर और की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, रजत नागपाल राणा सोतिल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। वी वर टॉकिंग अबाउट कोक स्टूडियो भारत। कैसे? कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल रूट्स को एक फ्यूजन की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है, बट टुडे वी वांट टू गिव स्पॉटलाइट टू पहली बार ये गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इंप्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है, और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहाँ हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, द वोकल्स, इट्स टॉप नॉच, 10/10 एक्सपीरियंस। इस गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है ये गाना ऐसे लंग्स में उतर जाता है, बिकॉज इतनी एनर्जी दे जाता है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप म्यूजिक लवर से उनका फेवरेट कोक स्टूडियो इंडिया ट्रैक पूछते हो, मदारी का नाम ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ कोक स्टूडियो थ्रोबैक प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 4।

0: अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। आई नो दैट हम सबके कंफर्ट सॉन्ग होते हैं, पर हर वो गाना जो हमें अच्छा लगा हमने कभी ना कभी तो पहली बार सुना था ना। इट्स टाइम टू पुट स्पॉट लाइट ऑन अ सॉन्ग लाइक दैट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई आर्टिस्ट रेकमेंड करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। हर आर्टिस्ट, हर इंसान, मैं, आप किसी ना किसी ड्रीम को चेस कर रहे हैं और हम उसकी जर्नी में हैं अभी। एंड ऑफन जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो हम वापस जा सकते हैं, ना अभी तक वहां तक पहुंचे हैं जहां जाना था। एक तरह से हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। आज का गाना स्पॉटलाइट एक ऐसा गाना है जो इसी फीलिंग को हाईलाइट करता है। गाने का नाम है लॉन्ग।

0: गाने में तीन आर्टिस्ट हैं, एमसी स्क्वायर, राधिका भिंडे एंड विकेट सनी। एमसी स्क्वायर की जर्नी खुद इस गाने की थीम से कनेक्ट करती है। हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं वो, उन्होंने हरियाणवी हिप हॉप को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। कहानी वो बता रहे हैं लेकिन लग रहा है हमारे बारे में। यू नो वो फीलिंग जब आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ है, वो फीलिंग जब आप इतना आगे आ चुके हो कि वापस जाना ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन इतना आगे भी नहीं आए हो कि अभी सेलिब्रेट कर सको। कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में सक्सेस ढूंढ रहा है, कोई अपने शहर में ही बेटर लाइफ ढूंढ रहा है। ऑल ऑफ अस आर चेजिंग दैट ड्रीम एंड सम ऑफ अस आर लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बी ओपन टू इट, लिरिक्स को ध्यान से सुनना। एमसी स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी का गाना दिस इज लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं, पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

खेत जगे सरवाड़े में एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़े में।

0: हार्ड हिटिंग लिरिक्स. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय एमसी स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी. आई लव दिस अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड उनके म्यूजिक का सीन, दैट वो ना इन बिटवीन वाली फीलिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं. हमेशा अपने गानों में कोई आंसर्स देने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन को चेस कर रहे होते हैं एंड हम सब उस फीलिंग में अटके होते हैं. गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे एड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ री एंट्री. संजू राठौर, द मैन, यू आर द लेजेंड. उनका हर गाना मेक्स अस वांट टू ग्रूव. इस बार गाने का नाम है बैंगल्स. आपके प्यार की वजह से इस गाने ने वापस एंट्री मारी है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पॉप म्यूजिक इज ऑल अबाउट हाउ इट मेक्स अस फील। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं तो वो नए नहीं होते पर पुराने भी नहीं लगते, तभी हम उन्हें क्लासिक्स बुलाते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज़

Mika Singh's Something Something. And the song we're going to feature this week is... The uber cool song from 2000s. Gana ka naam hai Main Deewana by Ganesh Hegde. Ye gana 2005 mein release hua tha as part of the album G, Ganesh Hegde. Ganesh Hegde ne ye gana sirf gaya nahi tha, usse compose bhi kiya, perform bhi kiya and music video ko creatively lead bhi kiya. Is album se pehle tak mostly log Ganesh Hegde ko ek choreographer ke roop mein hi jante the. But after this, he became a pop star dude and Main Deewana was such a rage. Agar aapne ye gana suna hai, then you know that you cannot just listen to the song, you experience it. In the moves, in the grooves, और mirror के सामने तो I know we all have tried that step. The video of the song was so futuristic. Dance तो I still can't copy it. Styling, everything was larger than life. Usually जो pop music की videos होती थी in 2000s, 90s, वो बहुत story driven होती थी, character driven होती थी. But this one was exactly performance led energy type की. But the nostalgia doesn't just hit because of the video. ये गाना उस दौर को represent करता है जब Indian pop artist खुद stars हुआ करते थे, जब उन्होंने ये बिलीव करना शुरू किया दैट आई हैव टू बी द हीरो इन माय ओन सॉन्ग. गाना किसी फिल्म का नहीं है, कोई एक्टर स्क्रीन पर नहीं था, कोई मूवी प्रमोशन नहीं थी, आर्टिस्ट ही हीरो है. एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. एंड ऑनेस्टली 20 साल बाद भी इस गाने में एक चीज पुरानी नहीं लगती. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. द उबर क्लासिक सॉन्ग फ्रॉम 2005, गाने का नाम है मैं दीवाना. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू एज अ कैसेट क्लासिक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. Oh, oh, oh, oh,

0: wanna do is get a little loving good. Let me take a high in another world. Give it to me now, give it to me now. Let me dig, I dig, I dig that body.
1: I swear, ये गाना सुनके स्कूल की छुट्टियाँ याद आती हैं. वो टाइम याद आ जाता है जब हम गाने सुनते भी थे, देखते भी थे और कॉपी भी करते थे. गणेश हेगड़े की आवाज में दैट वॉज मैं दीवाना ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. 90s एंड 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप सॉन्ग दैट यू स्टिल थिंक इज फैबुलस हमसे आके शेयर करो. अश्काय और मैं आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. There's been slight movement. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना बैरन 11 हफ्तों से काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद करण औजला 21 वंस अगेन 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दे हैव सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट. 28 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: Number 2.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Ek baat bataiye. अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा, धुरंधर, एआर रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं। मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन द मिर्ची टॉप 20। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, व्हिच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है। ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ। द सॉन्ग्स हैवन कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20।
0: नंबर 20।

कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा।

0: उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं, उसके डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? दिस एपिक फिल्म इज री रिलीजिंग, सो वॉच इट अगर आपको वक्त मिले। बिलाल मिर्ची .20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑन द शो, दिस इज चांद मेरा दिल ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70।

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, AR रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो उसे म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by AR रहमान and Irshad Kamil.
1: Number 16.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

0: ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता, आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो।
1: पड़े अगर तेरे लिए।

देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का। कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।

Dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची टॉप 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी. पिक ऑफ द वीक.

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में, नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।
1: इश्क

0: यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर,
1: नंबर 1।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। और रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। तुम्हारी चाय रेडी है, कॉफी रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए ढेर सारी गॉसिप, गपशप, न्यूज, मस्ती एंड मच मोर। और साथ साथ में आज मेरे पास तुम्हारे लिए कॉन्टेस्ट भी है जिसमें तुम जीत सकते हो कुछ अमेजिंग प्राइजेस। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी लाइफ का फंडा काफी सिंपल है। वो ये कि लाइफ के रेडियो पर खुशियों का वॉल्यूम बढ़ाओ, सैडनेस को थोड़ा सा साइड ट्रैक पे रखो और मेन कैरेक्टर एनर्जी में आकर पूरा दिन मिर्चीदार बनाओ। ऐसे पूरा दिन मिर्चीदार बनाने के लिए तुम्हारी सुबह मिर्चीदार बनाती हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला, तुम्हारे साथ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर तुम्हें अभी बहुत कुछ मिलने वाला है अगले कुछ घंटों के लिए। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033-64-7244, दैट्स माय नंबर। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा बजा।

देयर, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अगर सुबह सुबह तुम विशाल मिश्रा के गाने गुनगुना रहे हो तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि आज तुम जीत सकते हो विशाल मिश्रा के पागलपन टूर 2026 के टिकट्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। एनसाई यूएसए इंक प्रेजेंट्स विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी फॉर पागलपन टूर 2026। द कॉन्सर्ट इज हैपनिंग फ्राइडे 26th ऑफ जून को 7 PM ऑनवर्ड्स एट हार्ड रॉक लाइव एट इटीज अरीना अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में। अब कॉन्टेस्ट टाइम है। सिंपल सा सवाल मैं पूछने वाली हूँ, उसका मिर्चीदार सा आंसर देना है। 3 ऑप्शंस भी देने वाली हूँ मैं। मुझे बताओ विशाल मिश्रा इज परफॉर्मिंग लाइव इन विच स्टेट। ऑप्शन ए न्यू जर्सी, ऑप्शन बी जुपिटर एंड ऑप्शन सी झुमरी तलैया। प्रीटी इजी राइट। फटाफट से अपने आंसर्स भेजो, या तो व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। मैसेज करना कैसे, सबसे पहले लिखना है विशाल मिश्रा, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी जो भी तुम्हें सही लगता है फटाफट से भेजो मुझे अभी की अभी, ताकि तुम जीत सको इस पागलपन टूर के टिकट्स। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. और अब हम चलने वाले हैं हमारी टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर. स्टार्टिंग इन 1815, द बैटल ऑफ वाटरलू. आज के दिन नेपोलियन बोनापार्टे फेस्ड हिज फाइनल डिफीट. And 1858 में इंडिया रिमेम्बर्स द ब्रेवरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता था. वो बिकेम अ सिंबल ऑफ करेज आफ्टर फाइटिंग इन द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. जंप टू 1940, फ्रॉम लंडन चार्ल्स डे गॉल मेड हिज लेजेंडरी रेडियो अपील आस्किंग पीपल टू कीप रेजिस्टिंग ड्यूरिंग वन ऑफ हिस्ट्रीज टफेस्ट टाइम्स. फिर आया 1946, गोवा रेवोल्यूशन डे. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हेल्प्ड स्पार्क अ मूवमेंट इन मारगांव दैट बिकेम अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन Goa's journey away from colonial rule. Then 1956 mein India passed the Hindu Succession Act. And in 1983, absolute icon moment, Dr. Sally Ride became the first American woman in space. और अब अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक कॉन्टेस्ट में एक सवाल पूछा था जिसका मिर्चीदार जवाब देकर तुम्हें मिल सकते हैं विशाल मिश्रा के कॉन्सर्ट के टिकट्स. बिकॉज़ आई यूएसए इंक ब्रिंग्स विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी पागलपन टूर 2026 के लिए, जो की होने वाला है 26 जून को. अब कॉन्टेस्ट का सवाल बड़ा ही सिंपल है. विशाल मिश्रा इज परफॉर्मिंग लाइव इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है न्यू जर्सी, ऑप्शन बी है जुपिटर एंड ऑप्शन सी है झुमरी तलैया. फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजो या तो व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 पर, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. लिखना तुम्हें क्या है, सबसे पहले लिखना है विशाल मिश्रा, उसके बाद अपना पूरा नाम और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी. सही जवाब लिख कर मुझे भेज देना है मेरे हैंडल नेम पर, दैट्स MIRCHIPRIS. और अभी फटाफट से मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए चलाती हूँ. मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब सुनने वाले हो वेदर का फोरकास्ट। राइट नाउ इट्स अराउंड 69 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स लिटिल बिट क्लाउडी एंड रेनिंग, सो इफ योर हेयर हैड प्लान्स टुडे, आज वेदर ने तो सब कुछ कैंसिल कर दिया है। हेड्स अप, वैसे थंडरस्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टिल नेक्स्ट 1 आवर, सो इफ द स्काई सडनली स्टार्ट्स टू मेक द सराउंड साउंड टाइप का म्यूजिक, तो समझ जाना कि थंडरस्टॉर्म चालू हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्लाउड्स जो है वो सेटल हो जाएंगे एंड द डे विल स्टार्ट बिहेविंग इटसेल्फ। टुडेस टेम्परेचर स्विंग्स फ्रॉम 68 डिग्रीज फारेनहाइट टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट एंड यस इट विल फील लाइक 69 टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट। और हमारी देसी फैमिली के लिए इसका मतलब है कि हुडी पहनो, चाय पकौड़े वाला मौसम चालू हो चुका है। वैसे मॉर्निंग में ये हाल रहने वाला है, लेकिन आफ्टरनून आते आते तुम्हें थोड़ी सी एसी की जरूरत पड़ने वाली है, और इवनिंग आते आते फिर मूड थोड़ा सा कूल हो जाने वाला है। फन फैक्ट ये है कि आज एक्चुअली इज अ लिटिल बिट वार्मर देन यस्टरडे, यानी कि आज तुम्हें थोड़ा सा लाइट जैकेट पहनना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाते वक्त SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अभी मिर्चीदार गाने मेरे पास प्रिपेयर्ड है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर। फटाफट से मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग। जरा आप सुनने वाले हो खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले, एट द बायलैटरल मीटिंग ड्यूरिंग द G7 समिट, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द इंडियन PM नरेंद्र मोदी मेट एंड डिस्कस्ड अ रेंज ऑफ टॉपिक्स। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ट्रंप ऑल्सो स्पोक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन्स पोजिशन ऑन वुमेन स्पोर्ट्स एंड यूथ रिलेटेड पॉलिसीज व्हाइल प्रेजिंग इंडियाज लीडरशिप। Number 2 पर पोर्टुगल कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ट बिकेम द ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच एट 41 इयर्स एंड 132 डेज। ऑल्सो जॉइंस द वेरी एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ प्लेयर्स अपियरिंग इन 6 फीफा वर्ल्ड कप्स। एंड नंबर 3 पर इंडिया रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट एवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टोटल, पुटिंग अप 209 फॉर 5 अगेंस्ट नेदरलैंड्स। बिग चीयर्स टू स्मृति मंदाना विद 74 एंड शिफाली वर्मा विद 55। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.
1: Yeah, yeah, you already know what it is. Okay.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिल्ट्री मॉर्निंग्स। सो सिंगर केटी पेरी रिसेंटली ओपन्ड अप अबाउट लव एंड शेयर दैट बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद फॉर्मर कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो हैज ट्रांसफॉर्म्ड हर। उनका कहना है that having love in her life changed her perspective. She spoke about how having love in her life changed her perspective and even referenced that classic thought. Maybe all those love songs weren't exaggerating at all. केटी का ये भी कहना है कि हाउ समटाइम्स थिंग्स वी कॉल क्लीशेज बिकम क्लीशेज बिकॉज पीपल कीप फाइंडिंग ट्रूथ इन देम। एंड अब लव की बात हो ही रही है तो तनिष्क की बात कैसे ना हो। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर तुम अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज करा सकते हो एंड यू कैन गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम on exchanged gold upon diamond purchases. साथ साथ में 0% deduction on exchange of old gold above 9 carats. Terms and conditions applied. फिलहाल प्रिसला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर, आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। Meanwhile, you go and check out my Instagram and X. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

नमस्ते माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे इज कमिंग ऑन 21st of June, मिर्ची ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते हम देंगे लाइफ चेंजिंग रेपुटेशन डैमेजिंग बिल्डिंग कम्प्लीटली योर टेस्ट टाइप की मिर्ची योगा क्लासेस। और आज की क्लास है, प्लीज वेलकम, शादी नहीं हो रही, क्रश रिप्लाई नहीं कर रही, आसना।

0: प्रसन्नंदा, सब लोग योगा मैट पर आ जाइए, फोन को सामने रखिए, व्हाट्सएप या इंस्टा डीएम खोलिए, लास्ट सीन ऑब्जर्व कीजिए, अब स्पाइन सीधी, होप लो, एक्सपेक्टेशन लोअर, सांस अंदर, मैसेज मत भेजो, सांस बाहर, स्टोरी मत चेक करो। अब राइट हैंड को हल्का सा ऊपर उठाओ, जैसे मे बी दे आर बिजी, और लेफ्ट हैंड से डिग्निटी को पकड़कर नीचे ले आओ। एडवांस्ड वेरिएशन, फोन को उल्टा रख दो, 2 मिनट बाद वापस चेक करना है, फिर फोन उठाना पड़ेगा। रिपीट टिल इन अ पीस तुम्हारे क्रश के साथ साथ क्रश हो जाए। गुरु का साइड नोट, अगर 11 राउंड्स के बाद भी रिप्लाई नहीं आया तो समझो तुम्हें निर्वाणा की प्राप्ति हो चुकी है, अटैचमेंट रिलीज हो चुका है और ऑरा क्लेंस हो चुका है।
1: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: वैसे रियल योगा का आइडिया सिंपल है, यू नो, बैलेंस, माइंडफुलनेस और बॉडी को थोड़ा सा फिट रखने के लिए थैंक यू बोलना पड़ता है। लेकिन मिर्ची पर फिलहाल इस हफ्ते तुम्हारी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी ट्रेन किया जा रहा है मिर्ची के योगा क्लासेस के साथ। अब मुझे बताओ तुम्हारा फनीएस्ट योगा पोज कौन सा है, या फिर एक ऐसा योगा पोज जो तुम सीखना चाहते हो। द सैलरी आई और गई स्ट्रेच, द वीकेंड लॉन्ड्री लंजेस योगा पोज, एंड लैपटॉप को फाइनली बंद करो मुद्रा। फटाफट से मुझे मैसेज भेजो, व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर कनेक्ट करो विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड बेस्ट पोस्ट डिस्क्रिप्शन विल मेक इट ऑन एयर। अब जाने से पहले ये याद रखो, इफ दे रिप्लाई breathe, if they don't reply also breathe, aur sundar ho mirchi mornings mere yani ki prasala ke saath, stay tuned and stay hot।

0: प्रिसिला विद यू मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240 $4,240 पड़ रहे हैं। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं। और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: देयर यू गो। गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: This is something

मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलती है। सबसे पहले द यूएस एंड ईरान हैव साइंड अ एमओयू एम्ड एट ईजिंग टेंशंस एंड मूविंग टुवर्ड एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। स्टेटमेंट्स अराउंड द अग्रीमेंट मेंशन्ड होप्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड रीओपनिंग मूवमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स द नेक्स्ट बिग स्टेप। Number two, Pakistan had announced plans linked to an official signing event in Switzerland, but later updates clarified that the agreement process happened digitally instead. The announcement was revised afterwards. And number three, Portugal's Cristiano Ronaldo had a quieter opener in the FIFA World Cup 2026, and after the match ended in a draw, some fans in the crowd started chanting another football legend's name. Meanwhile, Ronaldo at 41 is still out there playing World Cups. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। जरा अब हम बातें करने वाले हैं सितारों की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: It is यानी मेष राशि, feeling a little lost lately. Don't panic, no need for a dramatic life reboot. Bas retrace your steps, make one tiny adjustment and boom, comeback season शुरू हो जाएगा. Lucky color is electric blue, lucky number is 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, रीसेंट वीक्स ने थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया है लाइफ में, लेकिन कॉस्मिक कस्टमर केयर का कहना है गुड न्यूज डिलीवरी इज ऑन द वे, तो स्टे ओपन. लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, लकी नंबर इज 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, यस मे बी यू टुक ऑन टू मच, लेकिन समहाउ केओस बिकेम प्रोडक्टिविटी. Hashtag respect. Keep chewing through life one to-do list at a time. Lucky color for you is pearl white. Lucky number is 5. Cancer yani kark rashi. Universe ka kehna hai, your good fortune isn't random. You earned it. To guilt mat lo yaar. Compliments accept karo aur chill maro life mein. Lucky color for you is sapphire. Lucky number is 5. Leo yani ki sih rashi. Someone may test your patience today. Don't react. Smile and just walk away. Nothing annoys drama more than inner peace. Lucky color is burnt yellow. Lucky number is 9. And last but not the least, Virgo yani kanya rashi. Things felt delayed. Cosmic traffic is clearing. धीरे धीरे से सब कुछ सही हो रहा है. Patience रखो आज और pay off मिलेगा कल. और हाँ, don't refresh your life every 5 minutes. Lucky color is black. Lucky number is 19. And that's it for Rashi Zone Part 1. Rashi Zone Part 2 लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में on Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla. मुझे connect करो Insta और X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर number है 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड जस्ट लाइक दैट अनदर कप ऑफ चाय, अनदर कम्यूट, अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर, एंड अनदर डे ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स हैज कम टू एन एंड. अभी रैप अप का टाइम आ चुका है, बट बिफोर आई डिसअपियर लेट मी टेल यू दिस क्विक अपडेट. द यूएई यानी कि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज अनाउंस्ड न्यू रूल्स अराउंड सोशल मीडिया एक्सेस फॉर यंगर यूजर्स, बैनिंग पर्सनल सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 and limiting access to full platform features. It joins countries including the UK, Australia and Malaysia in tightening online access rules for kids. And honestly, whether you're team screen time or team go outside and play, one thing every desi household agrees on is parents somehow always know when you're online, even if they don't follow you. For my expat fam raising little global citizens, balance hi asli flex hai yaar. A little scrolling, a little sunshine, thoda sa family gossip is a perfect combo. And now, my favorite part. Tumhe bye bye bolne ke pehle kuch mirchidar bangers tumhare liye line up kar diye already. To unko enjoy karo aur jaakar mujhe bhi follow kar lo. Insta aur X par mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Filhal, stay tuned and stay hot.

0: Michi, it's hot.
1: साथी रे थोड़ा ठहर जा।

0: एक बात बताओ, बचपन में क्या आपका भी ख्वाब था कि आप बड़े साइज वाली चॉकलेट्स खाओ?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. आपको याद है, ads में there used to be chocolates bigger than the usual, और मैं हमेशा चाहती थी कि यार इतना बड़ा चॉकलेट का जो स्लैब है ना, ये खाने को मिल जाए. पर जो ads के बड़े वाले चॉकलेट बार्स हुआ करते थे ना, वैसे दुकान पर कभी नहीं दिखते थे. लेकिन thanks to globalization, we do get to see big, big chocolate bars on selective stores, जो आज भी जब देखती हूँ ना, तो दिल बड़ा excited हो जाता है यार. वो अलग बात है कि यार बचपन में इस चीज को लेकर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत चाहती थी कि मैं इतनी बड़ी चॉकलेट स्लैब्स खाऊं. लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं कभी नहीं खरीदती इतने बड़े चॉकलेट स्लैब्स. एंड द रीजन बिहाइंड दिस बचपन का ख्वाब स्टिल अधूरा होना इज कि अब जब ये बड़े साइज के चॉकलेट्स मिलने लगे हैं ना, तो कैलोरीज और शुगर इनटेक का ज्ञान भी तो भरपूर आ गया है मार्केट में. और बस ये बड़े वाले चॉकलेट बार्स की जो भूख है, ये आज भी अधूरी है. और आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हो रहा है यार कि इसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि किसको पता कल हो ना हो. मैं क्यों वेट कर रही हूँ कि जब मैं एक सर्टन साइज पे पहुंच जाऊंगी तब मैं वो चॉकलेट बार खाऊंगी. आई थिंक आई शुड जस्ट डू इट. आप क्या बोलते हो, वेट नहीं करना चाहिए ना? बस तो फिर आज ही कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाकर ना इसको खरीदने की कोशिश करती हूँ. बाकी आप मुझे बताना जरूर, हाँ, डीएम करके और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, कि क्या आपको भी ऐसे शौक चढ़ा करते थे बचपन में कि यार ये बड़ा वाला चॉकलेट बार मैं भी खाऊं. बताना. अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डाल रही हूँ. आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार 90s के दौर में एक बड़ी क्यूट सी फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अंजलि। और इस फिल्म का ये गाना, अंजलि अंजलि अंजलि हमारी आंखों का तारा अंजलि, याद है आपको ये फिल्म?
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And long before तारे जमीन पर या सितारे जमीन पर जैसी फिल्में आई, this film was made by Mani Ratnam, who worked on a movie talking about special needs kids, जिस टॉपिक को 90s के दौर में किसी ने नहीं छुआ था। And Anjali was among the first Indian mainstream films जो कि एक ऐसे बच्चे के ऊपर बनी थी who had mental disabilities, और जिस फिल्म ने autism जैसे developmental delay के बारे में awareness फैलाने की कोशिश करी थी, which was a very very rare thing in those days। हाँ, इस फिल्म की जो लीड थी, यानी कि वो जो छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर ये फिल्म का टाइटल रखा गया था, her real name was baby Shamili। और इस बच्ची की उम्र पता है क्या थी जब उसने ये अंजलि का रोल प्ले किया था? She was just 2.5 years old। Can you just imagine, इतनी छोटी सी बच्ची ने अपने कंधों पर पूरी फिल्म चलाई है। और यही वजह थी कि बेबी शामली इवेंचुअली गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर हर रोल, जिसकी वजह से शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स एवर। और आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस फिल्म की कास्टिंग किस बेसिस पे की गई होगी। वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली, मणिरत्नम सर वॉन्टेड टू कास्ट रियल स्पेशल चाइल्ड, लेकिन फिर रोल इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस स्पेशल चाइल्ड से वो एक्टिंग करवाना, वो इमोशंस निकलवाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से उन्होंने काफी सारे टॉडलर्स के ऑडिशंस लिए बिफोर दे सिलेक्टेड बेबी शामिली। एंड इस फिल्म को शूट करने के लिए कहा जाता है कि मनी सर ने काफी सारे हिडन कैमरास का इस्तेमाल किया, सो दैट वो जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनके नेचुरल मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए। क्योंकि यार बचपन तो बड़ा मासूम होता है ना, आप उनको एक्टिंग के दाव पेच सिखाओगे ना, तो वो नेचुरल मासूमियत जो है वो निकल कर नहीं आएगी, जो कि वो तब कैप्चर कर ली जाए जब वो निकल कर आए। और कितने सारे तो ऐसे सीन्स थे जिनको की शूट करने के लिए सिर्फ सिंगल टेक्स लिए गए थे, ताकि बच्चों की स्पॉन्टेनिटी जो है वो मेंटेन रहे। यानी कि पहला टेक जैसा भी गया है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत और स्पॉन्टेनिटी थी विच वॉज रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन, तो उस टेक को वैसा का वैसे ही रहने दिया और रीशूट नहीं किया। आई थिंक शायद इसी वजह से ये मूवी हमें इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वाकई में इतना ऑर्गेनिक इमोशन शामिल है कि जब हमने ये फिल्म देखी तो हम खुद भी रो दिए। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं रोए थे, सेट पर कई सारे लोग रोए थे, जिनके बारे में बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मैंने जब ये फिल्म देखी थी ना अंजलि, मैं बहुत छोटी थी यार, और मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म को देखकर मैं इतना रोई हूँ और इतना इमोशनल हुई हूँ कि मुझे उस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई थी। और मैं इतनी इनक्विजिटिव थी टू नो अबाउट दैट किड जो कि अंजलि बनी हुई थी पूरी फिल्म में। लेकिन सैडली तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था टू नो मोर थिंग्स अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड। बट ये इकलौती मैं ही नहीं थी जो इतनी इमोशनल हो गई थी इस फिल्म को देखने के बाद। जब ये फिल्म शूट हो रही थी एट दैट टाइम टू, काफी सारे लोग सेट्स पर इमोशनल हो गए थे।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड रेवती जो कि शामली यानी कि ऑन स्क्रीन अंजलि की मदर का रोल प्ले कर रही थी, उनके और शामली के बीच में काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि इमोशनल सीन्स थे। और जब वो सीन्स शूट हो रहे थे ना, तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो भी साथ साथ रो रहे थे। स्पेशली वो सीन जो कि हॉस्पिटल में शूट किया गया था, एंड दैट वॉज अंजलि's डेथ सीन। That was really, really heartbreaking. आज भी जब मैं वो सीन देखती हूँ ना भाई, मुझे तो रोना आ जाता है बहुत भयंकर तरीके से। एंड इसके पीछे की वजह ये है कि मणिरत्नम सर बहुत अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर, और बच्चों को वो पर्सनली रिहर्स करवाया करते थे सारे के सारे सीन्स मल्टीपल टाइम्स, सो दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आए कैमरा पे। क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही पहले टेक के अंदर बेस्ट शॉट निकल कर आ जाया करता था। और वो ज्यादा टेक्स ले भी नहीं रहे थे इस फिल्म को शूट करने के लिए बच्चों के साथ। यही नहीं, मणिरत्नम सर वो सो इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पेरेंट्स जो कि डील कर रहे थे विद स्पेशल चिल्ड्रन, कि उन्होंने इस फिल्म को महीनों की चाइल्ड साइकोलॉजी की रिसर्च वर्क के बाद ही शूट किया और लिखा। जिसका असर ये हुआ कि ये फिल्म इवेंचुअली वॉज बींग यूज एज अ रेफरेंस मटीरियल इन साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन स्टडीज अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज। स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ मनी सर डील्स विद द सोशल इश्यूज, और वो किस तरीके से इन सोशल इश्यूज को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर आते हैं और हाईलाइट करते हैं। ये उन्होंने सिर्फ अंजलि के साथ नहीं किया है, उनकी फिल्म बॉम्बे, दिल से, गुरु, ये सारी वो सारी फिल्म्स थी जिन्होंने सोशल इश्यूज को उठा के मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाके बड़े पर्दे पर दिखा के उसकी अहमियत को और बढ़ा दिया और उन सोशल इश्यूज को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया। ये है हमेशा का जादू जो मणिरत्नम सर अपने लेंस के साथ बिखेर ही देते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चैनल वी और एमटीवी में एक टाइम पर बड़ी कूल प्रॉपर्टीज बना करती थी यार, सिंपू सर याद है आपको?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड चैनल वी और एमटीवी एक टाइम पर देखना कूलनेस कोशेंट बड़ा दिया करता था यार, लेकिन उस कूलनेस कोशेंट में भी ना एक देसीपन था जो अंदर ही अंदर धारता था कि ये सिंपू सर वाला एड ब्रेक कब आएगा रे बाबा। हम वो जनरेशन है जो क्लास में अपने टीचर्स को कॉपी करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाए, लेकिन चैनल वी के सिंपू सर को बड़ा कॉपी किया बॉस। इतने कूल कैरेक्टर को बनाने के लिए क्या लगता है भाई, जो आज के टाइम पर टेलीविजन पर ऐसा कोई कैरेक्टर मिसिंग है? एक बार फॉर द सेक ऑफ पुरानी यादें सिंपू सर को तो सुनना बनता है, तो सुने
2: सर।
3: यस
2: सर, एक सम समझा दोगे सर?
3: अभी ने भाई आज तो पंकज।
2: सर थोड़ी टफ प्रॉब्लम है सर।
3: तो भाई आज तो पंकज नो बॉयज। भाई जोक क्या है भाई, व्हाट्स द जोक?
2: सर आज द पंकज
3: नीरज।
1: हाय, दिल खुश हो गया। अब एक काम करो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर। और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ ना, पता नहीं अनु मलिक की कॉम्पोजिशन का क्या जादू है बॉस। इस गाने को सुनते के साथ ही ऐसा दिल करता है कि हाय मुझे प्यार क्यों नहीं हो रहा यार, क्योंकि प्यार में पड़े हुए इंसान को इस गाने को सुनने में कितना मजा आता होगा सोचो। इतना प्यारा लिखा है जावेद साहब ने, इतना रोमांटिक गाना, और ऊपर से ये जो मेलोडियस ट्यून है ना इस गाने की, कुछ कुछ होता है यार, और ये राहुल तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पितारा। और अब चलो अपने दिल की धड़कनों को समझने के बजाय कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कुछ धुने। So basically, it's time for मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों की धुने मैं आपके लिए चला दूंगी और आपको गैस करना होगा कि ये दो गाने एक्चुअली है कौन से। तो चलो फिर आज का जो मिक्स है वो है कुछ ऐसा।

और आज के दोनों मिक्सर्स में एक खास बात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हिंट के तौर पे ये खास बात बता दी जाए कि ये दोनों ही गाने ना बॉलीवुड के दिलों के बादशाह के हैं। अब गेस करके बताओ ये कौन सा गाना है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना।

अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ, आज के टाइम पर देयर इज अ ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, लाउंज, लेकिन पुराने घरों में इतने फैंसी टर्म्स यूज नहीं हुआ करते थे बॉस। सीधे सीधे नाम थे हर कमरे के।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड बैक इन द ओल्ड डेज ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कमरों के साथ भी हुआ करता था कि जो काम वो कमरा किया करता था ना, वैसा ही नाम उस कमरे को दिया जाता था। जैसे कि जहाँ खाना खाते थे वो खाने वाला कमरा था, जहाँ टीवी देखते थे वो टीवी वाला कमरा था, जहाँ मम्मा डैडी रहा करते थे वो मम्मा डैडी का कमरा था, और नानी के यहाँ तो भाई फ्रिज वाला कमरा, बिस्तर वाला कमरा और गेहूं वाला कमरा भी हुआ करता था यार। यानी कि जैसा कमरा हुआ करता था, जो उसमें काम हुआ करता था, वैसा ही उसका नाम हुआ करता था। ये लिविंग रूम, लाउंज, डाइनिंग रूम, ये इतने फैंसी फैंसी नाम नहीं हुआ करते थे कमरों के। लेकिन फिर भी ना, कभी पता ही नहीं लगा कि हमने कैसे फ्रॉम खाने वाला कमरा टू डाइनिंग रूम का जो टर्म है ना, वो अपनी जिंदगी में अपना लिया। कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और जिसमें हमें पता भी नहीं लगाया कि हमें मुश्किल हुई थी कि नहीं हुई थी जब ये ट्रांजिशन हो रहा था हमारी लाइफ में। क्योंकि बचपन से तो हमारी आदत थी यार, अगर कोई चीज ढूंढनी होती थी जो कि टीवी वाले कमरे में रखी होती थी, तो एक आवाज आती थी कि अरे मेरी चप्पलें कहाँ है, तो अगला कहता था अरे टीवी वाले कमरे के बाहर ही तो उतारी थी तूने। एंड इट वॉज इजी टू फिगर आउट स्टफ। अब अगर कोई तब बोलता ना कि लाउंज के बाहर तो उतारी थी तूने, तो सब गोल हो जाते कि ये कौन सा कमरा आ गया यार हमारी जिंदगी के अंदर। वाकई में यार, कमरे में कमरा, कमरे में हम, इतने रंगीन थे ये नाम की कमरों के नाम में भी ये भरते थे दम। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर जीरो पीरियड,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें शायद याद भी ना हो, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूले, क्योंकि तुम हमारी जिंदगी में जीरो नहीं, हीरो थे। जब भी स्कूल की घंटी सुबह सुबह बजती थी ना, तो हमारा दिल अगले 8 पीरियड्स की थकान से पहले ना तुम्हारी आस में ही बैठा रहता था। तुम बाकी पीरियड्स जैसे नहीं थे, ना कोई किताब, ना कोई लेसन्स, ना कोई बोर्ड पे रटा रटाया लेक्चर। तुम तो जैसे स्कूल के बोरिंग दिन में आई एक सांस की तरह थे। कभी तुम म्यूजिक की मस्ती बन जाते थे, कभी तुम लाइब्रेरी की किताबों में सैर करवाते थे, तो कभी मैदान में खुलकर खेलने का मौका देते थे, तो कभी क्लास टीचर से गप्पे लड़ाने का मौका भी मिल जाया करता था तुम्हारे जरिए। कुछ बच्चों के लिए तो तुम होमवर्क पूरा करने का एक बड़ा ही सीक्रेट सा गिफ्ट थे, तो कुछ के लिए तुम वो वक्त थे जिसमें की दोस्ती और गहरी हो जाती थी। याद है वो दिन जीरो पीरियड, जब रिपब्लिक डे की परेड की तैयारी के लिए तुम्हारे टाइम पर ही हम स्कूल ग्राउंड में जमा होते थे, या फिर वो दिन जब किसी टीचर की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और वो एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर दिया करते थे और हमारी क्लास कैंसिल हो जाया करती थी, तो तुम्हारे बिना एक और खेल का मौका मिल जाया करता था हमें। तुम्हारी कोई तयशुदा पहचान नहीं थी यार, पर शायद इसीलिए ही तुम सबसे प्यारे थे। जब भी कभी तुम्हारा जिक्र होता है और कोई बोलता है जीरो पीरियड, तो एक मीठी सी मुस्कान खुद ब खुद चेहरे पर आ जाती है। तुमने हमें सिखाया कि हर टाइम पढ़ाई जरूरी नहीं होती, कभी कभी बस जीना और दोस्तों के साथ खुलकर हंसना भी जरूरी होता है। अब जब जिंदगी असल जिंदगी के पीरियड्स में बढ़ चुकी है ना, तो तुम्हारी याद और भी गहरा जाती है तुम्हारे उन्ही हंसी ठिठोली वाले पलों के लिए। तुम्हारी पुरानी दोस्त जो अब भी जीरो पीरियड को बहुत मिस करती है, और शायद तुम्हारी वजह से ही जीरो आज भी हमारे लिए हीरो ही है। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन की आवाज एंड शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक, दिल चाहता है का ये गाना इज कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट
1: द टाइटल ट्रैक। और कौन सा गाना यार, माय गॉड। मतलब इस गाने की खास बात पता है क्या है कि ये गाना जो है ये बीते कल का ही गाना है। मतलब जो गाना इतनी शिद्दत से कह रहा है कि दिल चाहता है कि कभी ना बीते चमकीले दिन। सैडली आज भी जब ये गाना हम प्रेजेंट में गुनगुना रहे होते हैं ना, तो दिल में एक अजीब सी कसक होती है कि यार ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा बचपन, हमारे कॉलेज डेज सब पास्ट में चले गए। और जब तब ये गाना सुना करते थे ना, तो लगता था कि हाँ गाना ही तो है। बट इसके मायने तब समझ में आए जब धीरे धीरे करके ना बचपन हमारे हाथों से छूटता गया, स्कूल छूटता गया, फिर कॉलेज छूटता गया, फिर नौकरी शुरू हो गई। और जब से नौकरी शुरू हुई है तब से लाइफ एक जैसी सी लगती है। बट वाकई में यार वो जो दिन थे वो ऐसे ही थे जहां पर जगमगाते थे, जिल मिलाते थे अपने रास्ते। और हमारे दिल में भाई इतना जज्बा था ना, ऐसा लगता था कि भाई पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, बोलो तुम क्या करना है, हम करके दिखाएंगे। और तभी हम गा दिया करते थे कि ये खुशी रहे, रोशनी रहे अपने वास्ते। हाय कितने नादान थे नहीं हम। बट इस गाने की सबसे प्यारी लाइन पता है क्या है, वो ये है कि कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए, इसीलिए जो आज है ना उसको जी लो। क्योंकि बचपन में भी हम बड़े ही होना चाहते थे और बड़े होने के बाद भी हमें यही लगता है कि अभी और बड़े हो जाए, अभी और कुछ कर ले फिर खुश हो जाए। नहीं यार, जो है वो अभी है, कल का क्या होगा कल पे छोड़ दो। और अभी जाते जाते यही गाना सुनते हुए जाओ, मैं आपके लिए यही गाना लगाते हुए जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और बाकी यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये गाना अगर किशोर कुमार गाते तो कैसा होता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं नहीं, मैं आपको कोई एआई टूल यूज करके उनकी आवाज में गाना नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं तो ये सोच रही थी यार कि आज तो हम ये सब कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा सैयारा का टाइटल ट्रैक इंटरनेट पे किशोर कुमार साहब की आवाज में भी अवेलेबल है, एंड इट इज साउंडिंग सो ब्यूटीफुल। तो आजकल हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। लेकिन पहले के टाइम की खूबसूरती शायद यही थी कि इतने रिसोर्सेज या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत सारा कुछ बस ख्यालों में, इमेजिनेशन में, इनमें होता था और हमारे बस के बाहर होता था, वही उसकी खूबसूरती थी। अब जरा आप इमेजिन कीजिए, बस उसको कुछ करना नहीं है, बस इमेजिन कीजिए कि आने वाला गाना जो किशोर कुमार साहब की आवाज में है वो अगर मुकेश जी गाते तो कैसा होता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, it's hot.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, only on मिर्ची.

0: आशा पारेख जी अपने ग्रोइंग अप इयर्स में एकदम टॉम बॉय थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने शेयर किया था।
1: दरअसल ये हुआ है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में सब लड़के ही थे और मैं एक लड़की, तो जो लड़के खेलते थे वही मैं खेलती थी। जैसे वो एक पत्थर मारने की गेम थी, पत्थर मारने वाली गेम सीख ली, काइट फ्लाई करने की टंगे भी उड़ाई है, फिर मार्बल्स से भी खेली हुई है वो मैं। इस तरह से वो सब जो हरकतें थी वो लड़कों जैसे हो गई।
0: इसीलिए उनके उछल कूद वाले जो रोल होते थे वो काफी मजेदार होते थे, ज्यादा नेचुरली आते होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: 1971 में एक मूवी आई थी बुड्ढा मिल गया, याद है ना आपको? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मिड 80s में ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड में ना एक ए रेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था मुझे बुड्ढा मिल गया। अभी बहुत सारे NRIs जब तब के वीडियो स्टोर्स में जाके वीडियो कैसेट लेकर आते थे तो वो 1971 वाली बुड्ढा मिल गया समझ के ले आते थे, और जब वो VCR में उसको चलाते थे तो उनको पता चलता था कि ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर।
1: और फिर वो वीडियो स्टोर वाले के पास ऐसे दंदनाते हुए गुस्से में जाते थे कि भाई ये क्या दे दिया तुमने।
0: कुछ लोग नहीं भी जाते थे, वो खुश हो जाते थे कि बेटर कॉन्टेंट देखने को मिल गया है।
1: Anyway, हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं।
0: 1971 वाली बुड्ढा मिल गया, इसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं राइट हियर पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

Mirchi. It's hot. Purani jeans with Charu. Only on

आपको पता है लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी साहब क्या मास्टर आदमी थे? फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जब वो गाने लिखते थे ना तो अक्सर गानों में 3-4 अंतरों की जरूरत होती थी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये इतने टैलेंटेड थे कि 20-40 अंतरे भी लिख देते थे कि भाई खुली वैरायटी है, तुमको जो उठाना है उठा लो। ऐसा ये गाना था जो भाइयों बहनों उस साल गीतमाला में पायदान नंबर 1 पर था। कंपोज्ड बाय रविंद्र जैन, सैंग बाय लता मंगेशकर। ये अपने टाइम का सुपरहिट गाना सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुली रिटन बाय हसरत जयपुरी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद जारू, ओनली ऑन मिर्ची।

छोटे होते ना मुझे फिल्मों में बड़ी कंफ्यूजन होती थी, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, अमर अकबर एंथनी की मल्टी स्टारर फिल्म जो होती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब कभी मुझे लगता था नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ उछल कूद कर रही है, गाना गा रही है वो एक में और एक तू, फिर वो तारिक शाह क्या था वो हीरो का नाम भूल गई मैं, उनके साथ वो गाना गा रही है लिख कर हम दीवाना दिल। फिर उसी फिल्म में जीनत अमान विजय अरोड़ा के साथ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो वाला गाने में परफॉर्म कर रही हैं। फिर हम किसी से कम नहीं का जो कवाली वाला टाइटल ट्रैक था उसमें वो ऋषि कपूर के साथ है, तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ नहीं आता था। लेकिन एक बात बताऊं, छोटे होते वाली ये जो टेंशन्स जो कंफ्यूजन्स होती थी ना ये अच्छी होती थी, कितनी प्यारी इनोसेंट हार्मलेस सी होती थी। बड़े क्या हो गए, दिक्कतें ही बदल गई भाई, हमें नहीं खेलना ये बड़े होना बड़े होना, हमको वापस छोटा कर दो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: क्या कहना माधुरी दीक्षित का और क्या कहना उनके डांसर्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्या कहना था माधुरी दीक्षित का उनके वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में। एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने क्या कहा था।
1: 1 2 3 ऑफकोर्स मेरा सबसे फेवरेट गाना रहेगा हमेशा, क्योंकि इस गाने ने मेरी एक पहचान बनाई। तब तक मैं सरोजी के साथ काम कर चुकी थी पहले, उत्तर दक्षिण में उन्होंने गाने किए थे मेरे, लेकिन क्लासिकल फॉर्म में ज़्यादा किए थे। तो पहली बार ऐसे कुछ वेस्टर्न इंडियन बॉलीवुड ऐसा मिक्स था, तो सरोजी ने कहा कि आपको इसके लिए रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो रिहर्सल की हमने, गाना शूट हुआ, जब आया तो लोगों ने इतना पसंद किया।
0: तो देरी नहीं करते हैं, फटाफट सुन लेते हैं ये ढंटड़ैन गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: कादर खान साहब एक अलग ही विरली वखरी असीम शख्सियत थे भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने अपने ओरिजिन के बारे में क्या शेयर किया था, कहाँ से वो और उनकी फैमिली बिलोंग करते थे।
1: प्रीन की मेरी वालदा थी क्वेटा बलोचिस्तान की, और मेरे वालिद जो थे वो कंदहार के थे, और ये लोग जाके सेटल हो गए थे काबुल में। वहाँ जो है मुझसे पहले तीन मेरे भाई हुए, वो 8-8 साल की एज को पहुंचते थे और मर जाया करते थे सर। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा डर गई और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है, यहाँ मेरे बच्चे जी नहीं पाते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगी। गरीब घराना सर, सुबह रोटी खा ली तो दोपहर का ठिकाना नहीं, दोपहर में अगर कुछ बन गया खाना पानी तो रात का भरोसा नहीं। ऐसे गरीब घर में अफगानिस्तान काबुल से कहाँ जाएंगे वो, बहरहाल चल पड़े लोग। होते हुआते धक्के खाते ये कुदरत जो है मेरी जिंदगी का स्क्रीन प्ले लिख रही थी, और मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरें खाते खाते धक्के खाते खाते ये बम्बई आए सर।
0: क्या बोलता था ये बंदा भाई, और आप कभी इनके इंटरव्यूज आराम से सुने ना तो आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्या इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है इनकी। इसी बात पे एक इंस्पायरिंग गाना सुन लेते हैं पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्च।

1974 की रोटी कपड़ा और मकान वीरू देवगन साहब की एस्टन डायरेक्टर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वीरू देवगन साहब द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्शन डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जो अजय देवगन जी के फादर भी थे। बहुत सी फिल्मों में इससे पहले ये एज स्टंट मैन काम कर चुके थे। और आपको पता है ये जब 13 साल के थे, लेट 40s की बात है, तब ये पंजाब से भागकर बॉम्बे आ गए थे। फिर उन्होंने बहुत छोटे मोटे काम किए और ये सब करते करते वो ना जो मोहल्ले के लड़कों की गैंग वॉर टाइप होती है ना, उसमें शामिल हो गए। वहां लड़ाई झगड़े करते थे। तब आप सोचिए उस टाइम के स्टंट डायरेक्टर स्टंट कोऑर्डिनेटर रवि खन्ना साहब थे, उन्होंने इनको एक स्ट्रीट फाइट में नोटिस किया और इनको उठा के ले आए कि भाई अपनी लड़ाई करने वाली तुम्हारी जो कला है उसको यहाँ इस्तेमाल करो। कई बार लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है अनएक्सपेक्टेडली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऋषिदा की फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले ना मैंने ऋषिकेश मुखर्जी की एज डायरेक्टर डेब्यू फिल्म जो थी 1957 की मुसाफिर वो देखी और अच्छी लगी मुझे फिल्म। और आप तभी देखें अगर आपको सर्टेन सैड टोन्स इन द फिल्म ओके हैं, मतलब थोड़ी बीच बीच में वो सैड भी हो जाती है। एक्चुअली उसमें क्या है, उसमें तीन कहानियां हैं। तो पहली स्टोरी का एंड अच्छा है, दूसरी स्टोरी का एंड अच्छा है, तीसरी स्टोरी का एंड सैड है। हालांकि वो जो थर्ड स्टोरी है ना वो बहुत ही पॉपुलर एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी है। तो किसी दिन आपका हैप्पी प्लस सैड मूवी ऐसा देखने का सीन हो तो आप देख सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, स्लो है, सैड टोन वाली पिक्चर है थोड़ी सी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और अभी हम यहाँ पे हैप्पी रोमांटिक टाइप का गाना सुन लेते हैं मिर्ची पर।
1: Ha ha ha ha!

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्च।

लोग 3-4 मिनट के गाने नहीं सुन पाते हैं, 12 मिनट की कवाली कौन सुनेगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कहा गया था यस्टरडेज के प्रोमिनेंट म्यूजिक कंपोजर रोशन नागरथ जी को, जो ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर भी थे और जिन्होंने कंपोज की थी 1960 की फिल्म बरसात की रात की आइकॉनिक कवाली। ऐसा सुनने में आता है कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ 24 से 27 घंटे लग गए थे और 72 से 75 रीटेक्स। अब उस टाइम पे तो लाइव होता था ना सब, किसी एक से गलती हुई तो पूरा गाना वापस से रिकॉर्ड। और किन किन दिग्गजों ने ये गाना गाया भाई, मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफी।

आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, एसडी बातिश और पता नहीं कितने कोरस सिंगर्स और कितने म्यूजिशियंस। इसमें कुछ पोर्शंस में ना जहाँ पे सिंगर्स ने आलाप लिया है वहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, ये लिरिक्स रेवोल्यूशनरी हैं। जब भी आप इनको सुनेंगे ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो पूरा गाना ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तो भी कुछ लाइंस बहुत पसंद है, जैसे खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क, ये है इश्क इश्क। जी, इसी कवाली का दूसरा पार्ट, पहले हमने 5 मिनट सुने थे, अभी बचे हुए 7 मिनट्स राइट है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

वाह साहब, जगजीत सिंह साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनकी आवाज में, उन्हीं की कंपोज की हुई, साथ में चित्रा सिंह जी ने भी कंपोज की है ये गजल, और इसे लिखा है सईद राही साहब ने। और दोस्ती के बारे में कुछ एक दो शेर अर्ज किए हैं। बशीर बद्र साहब ने लिखा है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। बशीर बद्र साहब ने ही लिखा है, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। अच्छा, इधर राहत इंदौरी साहब लिखते हैं, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक ली जाए, म्यूजिकल ब्रेक, जहाँ हम दोस्ती वाले एकदम फिल्मी गाने सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ब्लू टर्कोइज कलर की साड़ी में उछलती कूदती लहराती बलखाती हंसती गाती वहीदा रहमान जी याद आ जाती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। कैसे उन्होंने इस गाने को ना पूरी तरह से ऐसे ओन कर लिया, छा गई, मतलब देवानंद तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। और कितना ब्यूटीफुल गाना है जो एक तरह की फ्रीडम को डिस्क्राइब करता है। चलिए अगले गाने पे आते हैं अब, जिसके बारे में ऐसा सुनने में आता है कि इस गाने में जब जूही चावला ऐसे अंगड़ाई ले रही थी और उनका वो ऐसे गोल गोल घूमने वाला शॉट लिया जा रहा था, तो वो जो शॉट ले रहा था ना कैमरामैन ट्रॉली पे, वो जूही चावला को देखते देखते ऐसे फिसल गया, गिर गया। कयामत से कयामत तक का ये गाना सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: लाइक करते हुए या वैसे रिमार्क्स पे इंजॉय करते हुए, हंसी ठिठोल करते हुए। तो अगर आप उस जगह पे अपने दोस्त को चुप नहीं करा पा रहे हैं, उसको कॉल आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन ब्रो सोशल मीडिया पे इतनी डींगे हांकने से क्या ही हो जाएगा। कभी मौका मिले तो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से पूछिएगा कि वो ऑन अ डेली बेसिस ऐसी कौन कौन सी हरकतें झेलती है। वैसे मेरे एक रिव्यू पे रिसेंटली एक बंदे ने इसी तरीके से गाली गलौज की शुरुआत कर दी। मैंने उसको अपनी स्टोरी पे हाईलाइट भी किया एंड अनफॉर्चुनेटली दो लोगों के अलावा किसी ने भी उस बंदे को कॉल आउट नहीं किया इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड दैट इज वाई माई फ्रेंड आई एम सेइंग कि अपने कम्फर्ट के हिसाब से अगर आप किसी गलत चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, देन यू आर इक्वली गलत इन दैट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Dil wali gal kar le, pyar mere naal kar le.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।